नमस्कार, मेरा नाम कल्पित है। मैं भारत से हूँ। मैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस में अभ्यास कर रहा हूँ और आप रेडियो KHOE 90.5 FM फेयरफील्ड आयोवा USA से सुन रहे हैं। हेलो, माय नेम इज कल्पित। आई एम फ्रॉम इंडिया। आई एम ए स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो KHOE 90.5 FM इन फेयरफील्ड आयोवा USA।